0: हूँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनाऊ।
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज।

0: छैन। ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्सकै अभिकर्ता बनाऊ। प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड।
1: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

0: निकल गर्दा देखिने छाती को दाग लगायत को विशेष उपचार सेवा।
1: नया तथा पुराना संपूर्ण रोग आयुर्वेद पद्धति द्वारा सफल उपचार गरिने
0: र स्वदेशी तथा विदेशी आयुर्वेद कंपनी का औषधीहरू सुपथ मूल्य में पाइन्छ।
1: श्रीखण्ड आयुर्वेद फर्मा नीलकण्ठ नगरपालिका 3 धारिङदेशी पुछार बजार ट्राफिक गेट अगाडि। मोबाइल नम्बर 9843333898 9913381700।
2: अधिकारी
3: अधिकारी
2: अधिकारी
3: अधिकारी
2: अधिकारी
4: ए दाई के को नारा बाजी हो दाई?
5: अधिकारी सप्लायर्स को बारे में जानकारी दिदै हिडेको बहिनी
4: के हो लौन त हामीलाई नि भन्दिनु न।
5: ल सुन्नुस् बहिनी, बर्जर रंग को आधिकारिक विक्रेता अधिकारी सप्लायर्स में धारा फिटिंग सेनेटरी नेपाटप को पीपीसी पीपीआर सीडीसी पाइप टैंकी टॉयलेट को पैन पानी तान्ने मोटर कालो पाइप मार्बल ग्रेनाइट टाइल पाइन को साथ ही पाइप फिटिंग में 50 वर्ष ग्यारेन्टी बाथरूम फिटिंग में 10 वर्ष ग्यारेन्टी र दक्ष प्लम्बर तथा पेन्टर द्वारा पाइप फिटिंग र पेन्टिंग संबंधी संपूर्ण काम गरिन्छ नि।
4: हो र दाई? ल त्यसो भए म पनि उतैतिर लागू।
5: ए सुन्नु त बहिनी, त्यहाँ अर्डर अनुसार डीडब्ल्यूसी प्लास्टिक को ह्यान्ड पाइप पनि पाइन्छ है।
0: अधिकारी सप्लायर्स नीलकण्ठ नगरपालिका 3 पुछार बजार धादिङ किबो बोर्डिङ नजिकै प्रोप्राइटर त्रिलोचन अधिकारी र माधव अधिकारी। सम्पर्क फोन नम्बर 0105214038 मोबाइल नम्बर 9840394656।
6: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

0: जुत्ता चप्पल सुखद मूल्यमा खुद्रा तथा होलसेल बिक्री गरिन्छ नि।
1: हस् बाबा।
2: कृष्ण सप्लायर्स दार्जिलिङ बिस्तृत पुछार बजार प्रोप्राइटर कृष्ण तिमल्सिना।
3: सम्पर्क मोबाइल 9741031429।
4: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

0: सा तेरा हमारा चोला जीना सा तेरा हमारा चोला जीना सा तेरा हमारा चोला जीना चोला जीना
1: रेडियो धादिंग 106.6 मेगाहर्ट्ज़।

0: थोक लेन थोक कहूँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनो
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: बजार थादिंग देसी होटल जनजीविका अगाड़ी।
1: फोन नंबर 0105-21-248, मोबाइल नंबर 98-41-14-94-84।
2: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज।

0: कहूँ प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनो।
1: प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।